0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूल

0: The Avenue, Bradford, BD61DA, phone 01274306567, behind Shell Petrol Station.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाप ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेशे खिदमत है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफुट
8: 01274201679 UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो के पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर संत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस Your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim.
15: Idha jaa nasrullahi wal fath wa

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
1: You're listening to
0: 07877
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
2: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
1: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
2: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
1: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
2: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
3: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
2: जब चाहे कॉल मिलाए
1: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
3: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
4: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
4: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
4: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
2: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
2: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
4: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
4: UK
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
5: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
5: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
2: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
5: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जीने का सीख ले ढंग ढंग कर नफ्स से अपने जंग जंग वरना चढ़ जाएगा जंग जंग हो जा मुर्शिद के संग संग

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
15: بسم الله الرحمن الرحيم

کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا.

0: प्रेफर,
1: जब चाहे कॉल मिलाएं
0: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स। मीरपुर
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
1: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ईड़ में अल्लाह, समर में तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मानो हैदर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मानो हैदर में, हुस्न में अल्लाह, नजर में अल्लाह, शाम में अल्लाह, सहर में अल्लाह, गुंचे में और शरर में अल्लाह, शहर में नगर नगर में

फिर बदली ताज शाह ने फिर तरकीब बदली। अब उसने जो गिरा पेश की ना वो हुजूर के घराने की नजर की। अल्लाह ताला की हम हुजूर के घराने की नजर करता है शायद। उसने कहा

0: अल्लाह ताला के हम किए अशार मैंने पेश करने की सादत हासिल की और अब मुझे पढ़नी है नात।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: والمنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
7: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
7: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
7: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
7: जब चाहे कॉल मिलाए
6: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
9: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट
8: होटल रोड ब्रैडफोर्ड
7: जब चाहे कॉल मिलाएं
6: 01274781168
8: मीरपुर ट्रेवल्स
9: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ

0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
0: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
1: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679,
0: UK।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं

0: बालियां, अंगूठियां और हार
1: जो दुल्हन करे सिंगार।
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
1: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274-306-677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाओ बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
5: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
4: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
5: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
4: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
5: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
6: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
5: जब चाहे कॉल मिलाएं
4: 01274781168
6: मीरपुर ट्रेवल्स
7: मीरपुर
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
5: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स वन टू फोर कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही काके की
5: खालिस सोने पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
5: आन
8: क्वालिटी चार

0: ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. Trainers, or get your truck, bus, or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider. Help

0: 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
1: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक
6: फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सुफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफोर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफोर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुक कीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनाज तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए Asian Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ गेन शायद आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ गेन शायद आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं। जी हाँ, BFD एशियन रेडियो के नाम से आप हमें डेब पे भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे तमाशा गाहे आलम से, गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो धुंधलका सा कोई जैसे जमीन से आसमां तक है, ये कोई ख्वाब है जैसे नहीं मालूम के इस ख्वाब की मोहलत कहाँ तक है। करो जो बात करनी है। सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे, और यही नशात इस वक्त CV FM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही हैं। और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ देना चाहें, साथ निभाना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी सामीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आपकी नज़रों ने जब से हमें देखा। बहुत ही प्यारा क्लासिक सॉन्ग था और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी सामीन, अगर आपको भी हमारे स्टूडियो में कॉल करना है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306 और अगर आप हमें 3066677 और अगर आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल करनी है और हमारी लाइव कॉल में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा कोड नंबर ज़रूर मिलाइएगा। बैरून मुल्क के लिए स्पेशली है ये 00447805995963 पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सुन भी रहे होंगे वाइल यू आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें सुनना चाह रहे हैं तो www.bradfordasianradio.co.uk पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो अब आपको एक अच्छा सा शेर सुना देते हैं। अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे सबर मेरा भी कमाल रहा।
1: Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetland Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस।

जी सामिन, ब्रेक के बाद से एक बार फिर से आपको वेलकम है और इस वक्त तक खुशामदीद कहते हैं आपको अपने रंगे महफिल के प्रोग्राम में। जी शायदा, आपने हमें शेफील्ड से कॉल किया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद रखा और आपने हमारे स्टूडियो पर कॉल करके एक अपनी फरमाइश का गीत बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। उसके फ़ौरन बाद ही शकील साहब, थैंक यू सो मच, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बफर एजन रेडियो में और आपका भी गीत हम थोड़ी देर में लगा देंगे। और थैंक यू, आपने हमें याद किया। और इस वक्त आप हमारे साथ हैं, सैयद हसन साहब आपके साथ हैं, सना खान आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं बफर एजन रेडियो 1430 AM पे। अगर आपको भी हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर।

0: जी सामीन प्रोग्राम मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि नूर परी का बहुत ही प्यारा सा गीत तेरा गरूर था या मेरा गरूर था आपको पसंद आया होगा। ये थी शकील साहब की फरमाइश थी
1: जी।
0: बहुत ही प्यारी फरमाइश थी उनकी और हमेशा उनकी फरमाइश बहुत अच्छी होती है और उम्मीद करते हैं शकील साहब को भी अच्छा लगा होगा। हमेशा ये बहुत अच्छे अच्छे गीत हमारे स्टूडियो में लेकर आते हैं
1: जी।
0: तो जी सामीन हमारी जो अब नेक्स्ट फरमाइश है वो किसकी है रुखसार साहब की?
2: जो हमारी अगली फरमाइश है रुखसार साहब ने मैनचेस्टर से हमेशा दुआओं से नवाजते हैं, प्यार से नवाजते हैं और उनके लिए भी यकीन कीजिए कि दिल से हमेशा हमारी दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक जिस प्यार से मोहब्बत से खलूस से वो हमें दुआएं देते हैं दुआओं से नवाजते हैं अल्लाह पाक उसी तरह की जो दुआएं हैं नेक ख्वाहिशात हैं हमारी तरफ से उनके लिए भी अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक उन्हें भी बहुत सी खुशियां दे। तो जनाब दिल गलती कर बैठा ये दिल
0: है दिल तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको गीत बहुत पसंद आएगा तो चलते हैं सुनते हैं।
3: वेलकम वेलकम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जुबिन नौटियाल।
4: ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?

0: जमीन आपको उम्मीद करती हूं ये गीत बहुत पसंद आया होगा और ये गीत है रुखसार साहब की फरमाइश है दिल गलती कर बैठा तो बोल हमारा क्या होगा
1: कफारा क्या होगा
0: बोल कफारा क्या होगा उसमें उसने बोला बोल हमारा क्या होगा जी थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पे कॉल करने के लिए और अच्छा सा गीत पेश करने के लिए तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा अभी जो हमारी नेक्स्ट कॉलर ने जो हमें गीत की फरमाइश की है वो है तू धरती पे जाहे जहां भी रहे तो उम्मीद करती हूं कि आपको भी ये गीत बहुत पसंद आएगा
1: इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक
0: जी हम इसके बाद लाइव ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद हमारा लाइव प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा आप हमें टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव पे और हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर

0: our app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी सलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian
12: You're
0: Radio, please call our sales
12: team. Bradford Asian Radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: और सामिन, अब इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुंचे। जी हां सामिन, अब इस प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में आन पहुंचे और एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हमारी लाइव कॉल्स होती हैं, जिसमें आप सुनने वाले तशरीफ लाते हैं, कॉल्स करते हैं और इस महफिल को जीनत बख्शते हैं, रौनक बख्शते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद है, सना जी, आप भी सुनने वालों से एक बार फिर ज्वाइन इन हो जाइए।
1: जी सामी, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो चुका है। मैं हूँ आपकी होस्ट सना खान। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत रंगे महफिल अच्छा लग रहा होगा। और जी, हमारे लाइव कॉल का जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आपको हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। तो इस वक्त हमारे साथ शकील साहब मौजूद है हमारी कॉल पे।
0: जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
2: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है शकील साहब, आप?
2: जी आवाज आ रही है?
0: जी जी परफेक्ट आपकी आवाज हमें आ रही है। आप खैरियत से हैं? ठीक है
2: जी, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी जी,
2: तो हमारे साहब है को भी बहुत बहुत आदाब और सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत आदाब। खालिद
2: अली मीर साहब है, अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, इकबाल भाई हैं, महबूब अलाई हैं, सादिया बहन है, और भी शफीक भाई, सबको जितने सुनने वाले हैं सबको मैं तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
2: वालेकुम सलाम। तो ये शुजा फरखी है, इनकी गजल है।
0: शुजा फरखी, जी जी, इनायत कीजिए।
2: मिटाने अहले हक को झूठ के लश्कर निकल आए,
0: मिटाने हक को झूठ के लश्कर निकल आए,
2: उजालों के मुकाबल रात के मंजर निकल आए।
0: क्या कहने, उजालों के मुकाबल रात के मंजर निकल आए, बहुत खूब।
2: हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी,
0: हाँ हाँ, हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी,
2: के दरिया जब दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए।
0: क्या कहने की, दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए, बहुत खूब। ये शेर फिर से पढ़िएगा शकील साहब, बहुत ही अच्छा।
2: शुक्रिया। मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था,
0: मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था,
2: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए,
0: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए, बहुत ही प्यारा शेर है, वाह वाह, क्या कहने।
2: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की,
0: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की,
2: मगर मिट्टी से फूलों की जगह पत्थर निकल आए।
0: क्या कहने, क्या कहने, मुझे वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि तुमने इस मिट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने इस मिट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। जनाब,
2: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी,
0: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी,
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए।
0: क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
2: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी,
0: आहा,
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए।
0: कहते ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े,
2: बरस पड़े, माशाल्लाह
0: जनाब।
2: फिर आखिरी शेर कहते हैं, मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने,
0: मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने, वाह वाह शकील साहब।
2: उन्हीं की आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए,
0: उन्हीं की आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए, क्या कहने शकील साहब, वाह वाह।
2: बरखी की गजल थी,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तो एक प्रोफेसर रशीद हसरत है, उनकी गजल
0: आप अक्सर उनके सुनाया करते हैं, रशीद हसरत के, जी जी, अच्छे होते हैं हमेशा, जी जी।
2: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में,
0: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में,
2: फूलों से दामन है खाली गर्चे हैं गुलजार में,
0: बहुत अच्छे। कहते ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को,
2: माशाल्लाह। कहते हैं जायकों से उनके हमको कुछ नहीं है इन्हराफ, सबसे मीठा फल है लेकिन सब्र सब आसमार में,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का,
0: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का,
2: और अपने घर रखें माँ बाप को आजार में,
0: क्या कहने, और रखें, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का, और अपने घर रखे माँ बाप को आधार में।
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
0: हाँ हाँ, क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
2: हम दुकानदारी लगाने में फकत तकरार में।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: लगाते हैं फकत
0: तकरार में। बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
0: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
2: आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है। फिर से पढ़िएगा ये शेर।
2: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है, आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: और मुझे यहाँ ब्रेडफुट की एक लोकल शायरा थी, उनका वो शेर याद आ जाता है कि तुम जिसे रहनुमा बनाओगे वो हमारा ही नक्शेबा होगा।
2: माशाल्लाह
0: जी जी।
2: फिर कहते हैं, एक वफा को छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
0: एक वफा छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
2: ऐ मसवर रह गई बस एक कमी शाहकार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: जिसकी मर्जी जब जहां जैसी भी मनमानी करे।
0: वाह वाह,
2: एक जरा सा तम भी कहां बाकी रहा सरकार में।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: क्या हकीकत पूछते हो जिंदगी एक जबर है।
0: क्या हकीकत पूछते हो जिंदगी एक जबर है।
2: दर्द बनकर खून बहता है तेरे फनकार का।
0: बहुत खूब बहुत खूब, शुक्रिया।
2: तो आखिरी शेर कहते हैं, वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद।
0: वाह वाह,
2: वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद, लो चला है वो भी हमको छोड़कर अभियार में।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
2: शुक्रिया। तो बड़ी मेहरबानी, टाइम
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और तशरीफ आते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जी सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, हमेशा की तरह आज भी लाजवाब इंतखाब के साथ तशरीफ लाए थे। और हमेशा हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि जो भी ये लाते हैं बड़े मुंतखब कलाम के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और महफिल को चार चांद लगाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तरन भी मौजूद हैं और आप को भी हम खुश आमदेद कहते हैं। सना भी हैं, तरन भी हैं और हम सारे मिलजुल के एक आपके लिए भरपूर महफिल पेश कर रहे हैं। जरा सा तरन को भी ऑनलाइन लेके आइएगा। जी जी, तरन आप क्या सुनाओगी जरा, आपको भी हम लाइव लाते हैं ना टिकटॉक पे। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। आप खैरियत से ठीक है?
3: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे?
0: अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत सब ठीक ठाक। और जी जी, और देखते हैं कि तरन हमें आज क्या सुनाएंगी। या फिर आप ये वाला कैमरा आप लगा लीजिए, ये वाला स्टैंड।

0: और सामिन, ये खूबसूरत गीत तो चल रहा है और चलता भी रहेगा, लेकिन उससे भी खूबसूरत हमारे सुनने वाले हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, चश्मे रोशन दिले माशा, बा कमाल लाजवाब, बहुत आला बा इज्जत बा वकार बा ज़ौक बा शौक, हर दिल अज़ीज़ बहुत नफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक और काबिल अज़मत काबिल रिफ़त नहत काबिल रिस्पेक्ट जनाब मोहतरम हसन शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप?
1: जी हजूर, आप कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है, मिजाज ग्रामी कैसी?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत सब ठीक ठाक। और आप सुनाइए, आपके मैनचेस्टर का क्या हाल है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे है और ठीक ठाक है जनाब, फिट फाट है।
0: फिट फाट है मैनचेस्टर, क्या कहने मैनचेस्टर के, सही से।
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको और माशाल्लाह आपके साथ जो विराजमान हस्तियां हैं, माशाल्लाह मेरे लिए नायक काबिले इज्जत काबिले एहतराम और काबिले अजमत हैं मेरे लिए, और जनाबे मोहतरमा सना साहबा हैं और जनाबे मोहतरमा तरुण साहबा है, उन दोनों हस्तियों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा चाहत भरा उल्फत भरा तिबत भरा नायत मोहब्बत नायत चाहत और नायत उनसे
0: शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और आपको वेलकम भी कर रही हैं।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया और मैं इनका बेहद मशकूर ममनून हूँ। तो मैं जनाब एक पहले तो एक छोटा सा जोक लेके आया हूँ, अब सैयद राब बेहतर तो है नहीं वरना उनको सुना देता, अगर जा तो सुना दूं आपको।
0: जी जी इनायत इनायत कीजिए।
1: एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है,
0: फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। अच्छा जोक सुना रहे हैं, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। अच्छा
1: हस्बैंड बोलता है कि जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट होगी,
0: हाँ हाँ,
1: और तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी लाइफ फिनिश होगी।
0: क्या कहने क्या कहने क्या कहने, जबरदस्त है जबरदस्त है, अच्छा है अच्छा
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके जितने भी सामईन है सभी को अपनी जुमान में रखे, अल्लाह ताला किसी का मुहताज ना करे और सभी को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। तो ये छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ मैं आपके और माशाल्लाह तमाम सुनने वालों की गुजार करना हूँ, माशाल्लाह हमारे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज्जत माशाल्लाह मोहतरम शकील साहब आए थे और अपने मखसूस अंदाज में, कहते हैं कि उनका अंदाज भी निराला होता है और उनका इंतखाब भी जो होता है लाजवाब होता है।
0: वो शायद फराज ने इन्हीं के लिए कहा था ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: शकील साहब के लिए
1: जनाब मोहतरम शकील साहब, तो कहते हैं ना वो किसी तारुफ के मुताज ही नहीं है के हाल, उनका तारुफ कराना भी जो होता है ना वो यकीन करे कि हमारे जैसे छोटे बंदे के वो इख्तियार में नहीं है।
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, वो बहार की हवा है।
1: क्या कहने क्या कहने, बहुत माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी पा फरमाए,
0: आमीन आमीन।
1: तो ये क्योंकि ये लोग और आप जैसी माशाल्लाह हस्तियां ये उस्तादों में शुमार होती हैं, बल्कि
0: उस्तादों के उस्ताद के सलामत रहे।
1: तो ये छोटी सी पोएट्री है जनाब
0: जी, नहीं
1: क्या लिखता है, कोई मानूस मंजर आ गया है,
0: कोई मानूस मंजर आ गया है,
1: गली के मोड़ पर घर आ गया है।
0: क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िएगा।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कोई मानूस मंजर आ गया है, गली के मोड़ पर घर आ गया
0: है। वो कहते ना कि सुनता नहीं है कोई भी मेरी पुकार को, दस्तक बदल गई कि मेरा घर बदल गया।
1: लाजवाब, क्या कहने क्या कहने, मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
0: मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
1: मुझे वो साथ लेकर आ गया है।
0: क्या कहने, मुझे वो साथ लेकर आ गया है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
0: मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
1: मेरे आगे समंदर आ गया है।
0: बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह।
1: सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब लाजवाब। शेर है जनाब
0: जी जी,
1: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
0: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
1: तुम्हारे पांव में सर आ गया है।
0: क्या कहने, लाजवाब है, बहुत।
1: थैंक यू सर, आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ,
0: عنایت.
1: وہاں کوتا تھا اکرام تجھ سے,
0: کیا کہنے,
1: یہاں تیرے برابر آ گیا ہے.
0: بہت خوب, بہت خوب, لاجواب.
1: بہت شکریہ ٹائم دینے,
0: بہت شکریہ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور تشریف لاتے رہیے گا.
1: بہت شکریہ, خدا حافظ,
0: اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم اور قابل صد احترام رخسار چودھری صاحب مینچسٹر سے, جن عزتوں سے, محبتوں سے, چاہتوں سے ہمیں نوازتے ہیں, اس کے لیے ہم ان کے بے حد ممنون ہیں. اور اب ترن ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور لگتا ہے کہ آج یہ بھی کچھ کمال کرنے جا رہی ہیں. کیا خیال ہے سنا, کمال کریں گی نا؟
2: کیا لے کر آئی
0: ہیں؟ جی جی, ذرا
2: انہیں بھی. ہمارے لیے آج کیا لے کر آئی
3: ہیں؟ میرے پاس ایک پنجابی,
0: میں نے سوچا کہہ رہی ہوں میں ایک سوٹ لے کے آئی,
3: ہسن والی گلتے بھی ہس نہیں سکیا ڈردا میں.
0: بہت خوب,
2: بہت اچھے, بہت ہارٹ ٹچنگ.
3: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں,
0: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں. بہت خوب,
3: سارے پانڈے خالی نے ہوکا وی نہیں پردا میں.
0: بہت خوب, بہت خوب.
3: خود مریا وا تیرے تے تے تو نہیں سمجھدا میں.
0: بہت اچھے, بہت اچھے, کیا کہنے,
2: بہت اچھے.
0: جی جی, اور کچھ اور بھی سنائیے کرن ہمارے پاس.
3: ویسے نا میری اردو کی تھوڑی سی مزاق بنتا ہے ہر بار,
0: لیکن بہت اچھا آپ پڑھتی ہو, کیوں آپ ایسے سنتی ہو؟
3: لیکن اس بار سناؤں گی.
0: جی جی,
3: کسی شام مجھے بھی یاد کر لیا کرو.
0: واہ واہ,
3: میرے میں دوست پرانا ہی صحیح مگر زندہ ہوں.
0: بہت اچھی,
2: کیا بات,
0: کیا کہنے,
2: کیا
0: کہنے.
3: اور اسی کے ساتھ پروین سکیر کہتی ہے, تم نے کہا تھا کہ ہر شام تیرا حال پوچھیں گے, تم نے کہا تھا کہ ہر شام تمہارا حال پوچھیں گے, تم بدل گئے ہو جہاں تمہارے شہر میں شام ہی نہیں ہوتی.
0: بہت اچھے, بہت اچھے, کیا کہنا.
3: آئی تھنک مجھے اردو میں شاعری نہیں کرنی چاہیے.
2: نہیں,
0: کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے ہم سب سیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سبھی سیکھتے ہیں,
2: ٹائم ہے ہمارے پاس,
0: اچھا لگتا ہے. جی آپ بھی کچھ سنائیے.
2: میں سناؤں گی آپ کو بہت ہی پیاری سی غزل. دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے.
0: واہ واہ,
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے, اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے.
0: اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے.
2: تیری یادوں نے کئی خواب سجائے دل میں, پھر بھی ہر درد کو ہنس کر ہی نبھایا ہم نے.
0: بہت خوب, بہت.
2: راہ الفت میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں ملی, ہر قدم صبر کا چراغ جلایا ہم نے.
0: بہت خوب.
2: وقت بدلا تو کئی لوگ بدلتے دیکھے, اپنا کردار مگر خوب بچایا ہم نے.
0: بہت اچھے.
2: آج بھی دل میں امیدوں کا دیا روشن ہے, ہر اندھیرے کو محبت سے مٹایا ہم نے.
0: بہت خوب, دیکھا,
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے.
0: کیا
3: کہ بہت پیارا, بہت پیارا.
2: ہمارے ساتھ ہیر بھی موجود ہے اس وقت.
0: ہیر کو ہم تھوڑی دیر بعد بریک کے بعد لیں گے, تاکہ پھر
2: لائف پہ ہیر ہمارے ساتھ, آپ بریک پہ جائیں.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे

0: with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and...

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आवाज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। और अब लाइन पे हमारे साथ टिकटॉक की महफिल में हमारे जितने भी साथी हैं सभी को खुश आमदेद कहते हैं। बताइए कौन कौन से हैं इस वक्त?
1: जी इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं हमारी प्यारी सी हीर फ्रांस से। अस्सलाम वालेकुम हीर, कैसी हैं आप?
0: आपको आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है सब।
1: उसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी कॉलर मौजूद है सुंदस।
0: सुंदस आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हम।
2: सुंदस सो मच,
0: खुश आमदेद, वेलकम आज की इस बस में। और अगले हमारे कौन से मेहमान हैं?
1: जी हमारा नेक्स्ट कॉलर है बहुत ही प्यारे से हमारे हैं कॉलर्स हैं AMK, शी इज वेरी क्यूट DP के थ्रू पे और वो उन्होंने पहली बार हमें ज्वाइन किया आज।
0: उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं।
1: उसी के साथ हमारे अनदर कॉलर हैं अब्दुल्ला जी UAE से। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए और हमारे टिकटॉक लाइव को ज्वाइन करने के लिए।
0: तो अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो भी आप में से जो भी पहले बोलेगा वो पहले आ जाएगा, यूं करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए।
1: चले जी अब बताएं कौन पहले आना चाहेगा।
0: मुझे लगता है कि सुंदस की आवाज सबसे ज्यादा है, एंट्री मारेंगे सबसे पहले। जी सुंदस
2: नहीं मैं पुरानी कॉलर सुना इसलिए।
1: चले मेरी जान आप सब हमारे लिए बराबर है तो प्लीज इशाद कीजिए, प्लीज आ जाइए
0: सुनाइए आज देखते हैं क्या सुनाते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत ही सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: कहते हैं आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
0: आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
2: पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है।
1: क्या बात, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बात है। बहुत अच्छे। और इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल। अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल। जिंदगी तू ही बता कितना सफर बाकी है।
2: क्या कहने।
0: जी जी
1: इनाम बहुत अच्छे।
2: एक ही नदी की है ये दो किनारे दोस्तों।
0: एक ही नदी की
2: है ये दो किनारे दोस्तों। दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो।
1: क्या कहने
0: लाजवाब, लाजवाब।
2: आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कोच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो।
0: बहुत खूब,
2: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे।
0: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे।
2: नींद रखो या ना रखो, म्यारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
2: ये हवाएं उड़ ना जाए लेके कागज का बदन।
0: वाह वाह,
2: ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो।
0: क्या कहने, मुझे मोहसिन नकवी का वो शेर याद आ जाता है कि हमें हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। हमें हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर है जो हर दौर में भारी निकले।
2: क्या बात, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां। क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो।
0: क्या
1: क्या बात,
0: राहत अंदोरी खूबसूरत।
2: आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी
0: रखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जी और भी कोई गजल है तो सुना दीजिए, हमारे पास वक्त है।
2: तुझे जिंदगी का शऊर था,
0: तेरा क्या बना,
2: क्या बना।
0: हसन अब्बास रजा की है। वाह वाह
2: जी जी जी जी। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना।
0: मुझे इससे वो फिल्मी डायलॉग याद है जब तक आलिया तेरा क्या बनेगा।
2: ओ तेरा की बना है।
0: जबरदस्त है, जबरदस्त है। जी जी
2: चले, वो शकील भाई भी हंस रहे होंगे हमें।
0: ऐसे ही, ऐसे ही
2: है। ये क्या ये पंगे करती रहती है बीच में। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए।
0: वाह वाह,
2: मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया।
0: तेरा क्या बना,
2: तेरा क्या बना।
0: न जाने वो डाला क्यों बार बार जब भी आप कहती।
2: अच्छा मैं इसको ना फिर चेंज कर देती। वैसे वो आप अक्सर मुझे कहते हैं ना, वो अपनी रवायत को मत छोड़ो।
0: जी जी
2: तो क्या करें, अपनी रवायत पूरी करें।
0: मुझे याद है ये आपकी रवायत है तो इसी के मुताबिक चलें। आप जी जी आप ध्यान रखें अपनी गजल।
2: मैं जारी रखूं
0: जी जी। हेलो
2: चले इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना।
0: जी जी होल्ड करें।
2: दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।
1: बहुत अच्छा।
0: वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
2: रंजिशे हिजर का म्यार घटा देती है।
0: रंजिशे हिजर का म्यार घटा देती है। वाह वाह।
2: रूर जाने से गुजारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत खूब बहुत खूब
2: शुक्रिया। रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को।
0: रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को।
2: वो भी अर्शों से उतारे तो नहीं होते ना।
0: क्या कहने लाजवाब है। वाह वाह।
2: और सीने से कहां बात छुपी रहती है।
0: वाह वाह।
2: बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना।
0: क्या कहने क्या कहने।
2: हिजर तो और मोहब्बत को बढ़ा देता है।
0: वाह वाह।
2: अब मोहब्बत में खिसारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत अच्छे।
2: एक शख्स ही होता है मताए जान भी। एक शख्स ही होता है मताए जा भी। दिल में अब लोग भी सारे तो नहीं होते।
0: क्या कहने इसे फिर से पढ़िएगा। कहते हैं ना कि निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो। निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो। मोहब्बत की नजर से हर बशर देखा नहीं जाता। क्या कहने।
2: एक शख्स ही होता है मताए जा भी। दिल में अब लोग भी सारे
0: तो नहीं होते ना। बहुत अच्छे।
2: इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना।
1: क्या बात है।
2: दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तशरीफ लाते रहिएगा। महफिल में जैन रहे हैं। हो सकता है दोबारा आपको एक बार फिर चाय की प्याली के लिए दावत दें।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो आप हमारे साथ
1: नेक्स्ट हमारे साथ है हीर। हीर प्लीज
0: हीर
1: आ जाइए प्लीज।
0: वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदेद कहते हैं आज के रंगे महफिल में।
3: बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी।
0: वाह वाह। दिल है उदास चुप है।
3: दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी। आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए फोन के पास आ जाइए। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। जी जी जी।
3: ओके ओके मैं देखती हूँ। जी जी। हाँ जी चले मैं
1: परफेक्ट।
3: दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी।
0: वाह वाह।
3: आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: फूलों की दिलकशी हो के तारों की जिंदगी।
0: फूलों की दिलकशी हो के तारों की जिंदगी।
3: दिलकशी हो के तारों की जिंदगी। तेरी तेरी नजर है कितने नजारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने क्या कहने।
3: रस्ते हूँ बेचिराग तो कुछ सूझता नहीं।
0: रस्ते हूँ बेचराग तो
3: कुछ सोचता नहीं। यूं ही गुजर रही है हजारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे क्या कहने।
3: जज्बे हवस के पलते हैं सामाने ऐश में।
0: वाह वाह क्या कहने।
3: जज्बे हवस के पलते हैं सामाने ऐश में। बढ़ती है खारो खस में शरारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब
1: बहुत अच्छे।
3: लफ्जों में आ सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ।
0: लफ्जों में आ सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ।
3: सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ। एक खामोशी हजार इशारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब क्या कहें।
3: देखो तो जुल्मतों में फरोजा है कुछ चराग।
0: देखो तो जुल्मतों में फरोजा है कुछ
3: चराग। समझौता तो एक प्याम है तारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब
1: बहुत।
3: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई।
0: जलवे भी चाहते हैं
3: मुकाबिल रहे कोई। नजरें ना हो तो क्या है नजारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये शेर लाजवाब है। फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
3: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई। नजरें ना हो तो क्या है नजारों की जिंदगी।
1: बहुत खूब बहुत अच्छे।
3: दुनिया तो तगयराते मुसलसल का नाम है।
0: दुनिया तगयराते मुसलसल का नाम है।
3: कितनी सुबक है वक्त के धारों की जिंदगी।
0: क्या कहें।
3: उससे तो लाख दर्जा खजा में सकून था। उससे तो लाख दर्जा खजा में सकून था। नासूर बन गई है बहारों की जिंदगी।
0: लाजवाब है। बहुत खूब।
3: इल्जाम ये है क्यों ना रहे आस पास में, इल्जाम ये है कि क्यों ना रही आस पास हमसे, खफा खफा है सहारों की जिंदगी,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
3: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सौदा को,
0: वाह
3: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सवाद को, शब में कुछ और होती है तारों की जिंदगी,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
3: चर्चे गली गली सही फसलें बहार के,
0: आहा
3: चर्चे गली गली सही फसलें बहार के, तेरे बगैर क्या है बहारों की जिंदगी,
0: क्या कहने क्या कहने,
1: बहुत अच्छे
0: कहते ना कि चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, ए चांद डूब जाके तबीयत उदास है,
3: अरे अरे अरे क्या कहने हैं, बहुत खूब जी बहुत
1: जी। तो फिर अभी हम देते हैं टाइम आई डोंट केयर को, अब्दुल्ला जी अगर आप हमारे साथ स्टिल मौजूद हैं तो
0: जी, हम लाइव लेते हैं,
1: हाँ जी, और हीर तो हमारे साथ लास्ट मिनट
0: तक, हीर आपने हमारे संग ही रहना है
1: जी। अब्दुल्ला जी आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं
4: जी? बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए बेडफोर्ड एशियन रेडियो का, आप सब
1: आपको खुशामदीद कहते हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो में,
4: शायर चेंज कर दिया मैंने
0: जी जी, अच्छा किया
1: जी।
4: फरमाते हैं कि इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
0: इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
4: कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशवर फिर भी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
4: ना हो जाए, बहुत अच्छे, और बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
0: बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
4: नहीं मतलब मुझे, मतलब से मतलब है मैं तुमसे लड़ नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब लाजवाब,
4: बहुत शुक्रिया, और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है,
0: यहाँ शख्स
4: खुदा भी जी बिल्कुल
0: जी,
4: खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता,
0: बहुत बहुत बहुत क्या ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा ये, अच्छा
4: शुक्रिया, और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है, और खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता,
0: बहुत कहते ना कि खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, वो देना भी चाहे तो क्या देंगे किसी को,
4: बिल्कुल बहुत खूब, और मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
0: मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
4: नहीं उल्फत, फकत लफ्जी मोहब्बत है मैं तुम पे मर नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने, कहते हैं ना कि चाहत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, चाहत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं रखते, और नहीं रखते तो हैं हम और भी कुछ काम जरूरी, लेकिन तेरी चाहत से ज्यादा नहीं रखते,
4: नहीं रखते बिल्कुल, और तुम्हारी बात सुन ली है बहुत दुखी कहानी है,
0: वाह वाह क्या कहने,
4: सुनो तुम बाद में आना अभी कुछ कर नहीं सकता,
0: कर नहीं सकता, बहुत खूब,
4: और मोहब्बत की मुसाफत ने बहुत जख्मी किया मुझको, अभी ये जख्म भरने हैं मैं आहें भर नहीं सकता,
0: लाजवाब बहुत
4: बहुत शुक्रिया, और सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफरत सिखाई है,
0: वाह वाह,
4: मगर अब अजनबी हो तुम मैं नफरत कर नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
4: बहुत शुक्रिया, और भले भले मैंने नहीं चाहा मगर तुमने तो चाहा है,
0: वाह वाह,
4: तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं सकता,
1: बहुत अच्छे बहुत
0: खूब,
4: और बहुत शुक्रिया, और न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है,
0: न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है,
4: खौफ खाता है जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता,
0: क्या कहने, जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता, बहुत
4: डर नहीं सकता, बहुत शुक्रिया, और गौर कीजिएगा, अरे ओ इश्क, अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है,
0: हाँ हाँ हाँ क्या मिसरा है, वाह वाह, अरे ओ इश्क जा काम कर, वाह वाह,
4: हाँ अरे इश्क जा काम कर किसको बुलाता है,
0: बुलाता है,
4: हुस्न बाजार में बिकता है सूली चढ़ नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब, लाजवाब है लाजवाब है, बहुत
4: शुक्रिया, और यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है,
0: यहाँ हर एक चेहरे पे अलग तहरीर लिखी है,
4: यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है, मेरी मेरी आंखों में आंसू है, अभी कुछ पढ़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
4: बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद चांदी सजाता हूँ।
0: मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद चांदी सजाता हूँ,
4: खुद चांदी सजाता हूँ, मैं उसकी मांग में वादों के हीरे जड़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे। नासिर काजमी का शेर याद आ गया कि रंग दिखलाती है क्या क्या उम्र की रफ्तार भी, रंग दिखलाती है क्या क्या उम्र की रफ्तार भी, बाल चांदी हो गए सोना हुए रुखसार भी।
1: बहुत अच्छे,
4: बहुत अच्छे सर। गौर कीजिएगा कि भले झूठा मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए लेकिन, भले झूठा मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए लेकिन, मेरा कुछ वक्त बाकी है, जमीन में गड़ नहीं सकता।
0: क्या कहने, खास हस्ती के नाम ही शेर हम करते हैं। किससे पढ़िएगा बाबा, किससे पढ़िएगा, ये शेर बहुत अच्छा है।
4: मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए,
0: बिल्कुल
4: मेरा कुछ वक्त बाकी है, जमीन में गड़ नहीं सकता।
0: इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा। बहुत जल्दी।
4: मैं गौर कीजिएगा फिर से, मैं उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं।
0: वाह वाह, क्या कहते हैं।
4: मैं उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं, मैं अपनी हद में रहता हूँ, सो आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
4: बहुत शुक्रिया। और खुदा हूँ न वली हूँ मैं, फकत रिंदे अली हूँ मैं।
0: वाह वाह, क्या मिसरा है, वाह वाह,
4: बहुत शुक्रिया। खुदा हूँ न वली हूँ मैं, फकत रिंदे अली हूँ मैं, मैं कुछ भी दे नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गमों की धूप में रास्ता बना के चलता हूँ, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलता हूँ, अली की आल हूँ, सर को उठा के चलता हूँ।
1: बहुत अच्छे।
4: और शेर आखिर है कि अली कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज।
0: वाह वाह, क्या मिसरा है।
4: अली कुछ शेर हैं, रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज। किसी की लाज रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि अशार के
4: रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता।
0: अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए।
4: बहुत अच्छे, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। लाइन पे ही रहिएगा, अभी हमारी महफिल में शरीक रहिएगा, हमारे पास तकरीबन 5-7 मिनट
1: से। जी हमारे साथ नेक्स्ट हमारी हैं AMK। जी अस्सलाम वालेकुम AMK, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं।
5: जी जी जी अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया।
5: जी मैं मलेशिया में हूँ इस वक्त।
0: मलेशिया से आप हैं और आपको खुश आमदेद कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त वक्त क्या होगा।
5: जी इस वक्त रात के 4:50
0: रात के 4:45 कमोबेश। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बार आप आई हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं हम रंगे महफिल में।
5: बहुत शुक्रिया जी, जी मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी।
0: इनायत कीजिए। जी जी,
5: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे,
0: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे। फराज की खूबसूरत गजल है। वाह वाह
5: जी। नहीं, हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, इसको सहराब करे वो किसे प्यासा
0: रखे। क्या कहने, क्या कहने फराज के।
5: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना,
0: वाह वाह,
5: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे
0: अल्लाह रखे। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये खूबसूरत शेर इस गजल का।
5: जी जी, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे।
0: और मुझे मुस्न नकवी का वो शेर इससे याद आ जाता है कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे।
5: वाह जी, जी। हमको अच्छा नहीं लगता
0: कोई
5: हम नाम
0: तेरा। खूबसूरत है, वाह वाह।
5: हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझ सा हो तो फिर नाम भी तुझ सा रखे।
0: क्या कहने, कहते हैं ना कि नामों का एक हुजूम सही दिल के आसपास, नामों का एक हुजूम सही दिल के आसपास, दिल एक नाम सुन के धड़कता जरूर है।
5: वाह जी वाह, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है।
0: वाह वाह,
5: दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे।
0: क्या कहने, कहते हैं ना कि उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, जो किसी और को हमारा नहीं होने देता।
5: वाह जी
0: जी जी,
5: کم نہیں تمائے عبادت بھی تو ہر سے زر سے کم نہیں تمائے عبادت بھی تو ہر سے زر سے فکر تو وہ ہے کہ جو دین نہ دنیا رکھے
0: کیا کہنے کہتے ہیں نا کہ وعدہ معاوضے کا نہ کرتا خدا اگر وعدہ معاوضے کا نہ کرتا خدا اگر خیرات بھی سخی سے نہ ملتی فقیر کو
5: واہ جی بہت
0: جی
5: ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے
0: کیا کہنے کہتے ہیں نا کہ تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی دنیا ساری یہ بھی فراز کہی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی دنیا ساری آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا
5: زبردست یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز یہ قناعت ہے اطاعت ہے یا چاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے
0: یارب تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے یارب تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے
5: واہ جی واہ بہت شکریہ بہت
0: اچھا لگا آپ کا نام جان سکتے ہیں
1: ایم کے
5: جی میرا نام
0: جیسے آپ مناسب
1: جی اے ایم کے آپ ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا سیٹرڈے پہ بھی ہمارے پروگرام میں جی ضرور آئیے گا
0: سیٹرڈے اور وینسڈے کو ہمارا رنگ محفل ہوتا ہے تو ضرور
5: تشریف لائیے
0: بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر سلامت رہے اللہ حافظ
1: اللہ حافظ اللہ حافظ جی ہمارے پاس نیکسٹ کون آئے گی ہیر کچھ ہے اچھا سا
0: جی ہیر
1: ہیر اب اپنا مائک اوپن کر لیں
6: جی جی بالکل
1: آ جائیں میری جان
6: سلیقے سے اگر توڑے تو کانٹے ٹوٹ جاتے ہیں
0: سلیقے سے اگر توڑے تو کانٹے
6: ٹوٹ جاتے ہیں مگر افسوس یہ ہے پھول پہلے ٹوٹ جاتے ہیں
0: بہت خوب بہت
6: محبت بوجھ بن کر ہی بھلے رہتی ہو کاندھوں پر
0: جی جی
6: محبت بوجھ بن کر ہی بھلے رہتی ہو کاندھوں

करते हैं इस नगमे को आपने पसंद किया होगा। किताब मेरी, कलम मेरा और सोच भी मेरी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
9: saferaider.co.uk
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
12: तो उम्रें बीत जाएंगी सबब जो ढूंढोगे तो उम्रें बीत जाएंगी

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अभी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800
14: Teri khushiyon mein shamil ho sada meri duaein Teri khushiyon mein shamil ho sada meri duaein

0: many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
2: Bradford Asian Radio ke samein ki khidmat mein Hisam Muqaddam ka aadab. 1413 AM pe and online. आपकी खिदमत में गुलदस्ता प्रोग्राम लिए हम हाजिर हैं. इसी तरह एशियन रेडियो लाइव भी आपका साथ दुनिया भर के सामईन के साथ दे रहा है. प्यार, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत रूप हैं एक ही अक्स के. वो अक्स

धवन का कलाम, रवि के संगीत निर्देशक में रफी साहब, फिल्म धड़कन से आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, इस साज नया नया गीत मुबारक। आइए अब पेश खिदमत है जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं, गर्दिशों के मारे हुए ना

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Foot Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑटो

यह तीन भाइयों की मनहर निर्मल और पंकज उदास इस नगमे को उनके एल्बम तीन मौसम से लिया गया है। जिंदगी अब समझ में आई है, जिंदगी अब समझ में आई है, दोस्ती की है, चोट खाई है, हमको दुनिया शिकस्त क्या देती, हमने उनसे शिकस्त

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

अजीज दोस्तों, अब पेशे खदमत है सुदर्शन फाकिर का कलाम। जगजीत सिंह कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशक में गा रहे हैं। वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए,

किसी को चाहते रहना मकसद है जिंदगी का, किसी को चाहते रहना मकसद है जिंदगी का, यही है एक कदम नेकी का।

साहिर लुधियानवी का कलाम, रवि साहब की धुन और मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम था मेहमान। आइए अब सुनते हैं, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। लताजी गा रही हैं फिल्म अगर तुम न होते से।

टच के बाद आइए सुनते हैं अनवर की आवाज में। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। फिल्म जनता हवलदार से राजेश रोशन की धुन, मजरूह सुल्तान।

साहब की आवाज में अभी आपने फिल्म जनता हवलदार से नगमा सुना, एशियन रेडियो लाइव ग्लोबल चैनल से। गुलजस्ता प्रोग्राम में हिसाम मुकद्दम से पेश कर रहे हैं। हमसे राब्ता कायम करना हो तो बाखुशी ईमेल कीजिएगा hisam@asianradiolive.com। अब पेश खिदमत है एक नायाब गीत, गजल मुन्नी बेगम की आवाज में, चाहत में क्या दुनियादारी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: This is Asian Radio Live, Guldasta with Hisam Mukaddam.
1: आइए एक बार फिर फिल्म कुर्बानी से मनहर उदास और कंचन की आवाज में एक गीत सुनते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं इसे।

दोस्तों बारी है श्रिया घोषल की। फिल्म का नाम है देवदास, लिरिक्स नुसरत बद्र की है और संगीत बख्शा है इस्माइल दरबार ने। सिलसिला ए चाहत का न मैंने बूझने दिया।

का पेश है एस एच बिहारी का कलाम, ओपी नैयर की धुन। फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। गा रहे हैं महेंद्र कपूर। तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिले अनसिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं मोत्रिस दी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मोत्रिस दी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.
14: Bradford Asian Radio on 1413

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन खाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में

0: Guzzles Qualis. Classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. and also Saturday at 7 p.m.
1: जगजीत चित्रा के बाद आइए सुनते हैं आशा और रफी के इस दुगाने को, जिसे फिल्म धर्मा से लिया गया है। वर्मा मलिक ने इसे लिखा है और सोनिक ओमिका

ये सुनते हैं जनाब अनूप जलोटा की आवाज, कह रहे हैं जो फरेब मैंने खाए थे तुझे राजदान समझकर, जो फरेब मैंने खाए थे तुझे राजदान समझकर, उन्हें कैसे भूल जाऊं एक दास्तां समझकर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 3066.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब रणवीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रैडफोर्ड 01274201679
8: UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पे ऑर्थोपेडिक डबल बेड 600 पाउंड से जर्मन वॉल ड्रॉप

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488877।
1: मीडियम वेव 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
5: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
6: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
4: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
5: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
6: शमा बुटीक ब्रेफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफर BD89RY
5: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
9: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
8: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678
8: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.
12: Hey!

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: ताली तक भूम तक ताली तक जम तक धलाम तक झुक तक तक नक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम धरिता जग धरिता झन झाले को गुजारी दाबू तारी गेटे ताक झम धरिता जग धरिता झन झाले को गुजारी दाबू तारी गेटे झम तारी जग धारी जग नक नक
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: Adullah wey. İlah korkdalı va. Allah, Allah, Allah.
1: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड
8: 01274201679 UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
10: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
10: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
14: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
16: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पाउंड ब्रैडफोर्ड 9627229627
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
5: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
6: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
4: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
5: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियंजले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
6: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
5: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
11: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
11: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
11: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए Bradford Asian Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.